मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा

0: मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और एनएमबीए पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हमारा मन प्रभु की साधना में लीन है। प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम विपदाओं के अंधकार में हैं, आप हमें इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाइए।

0: अभी आप उस्ताद अहमद मोहम्मद हुसैन, MS सुबुलक्ष्मी, श्रुति सडोलकर और अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कृष्ण के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कृष्ण के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार।
1: कृष्ण संपूर्ण पुरुष थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आनंद की छाप बराबर बनी रही और खराब से खराब हालत में भी उनकी आंखें मुस्कराती रहीं। चाहे दुख कितना ही बड़ा क्यों न हो, कोई भी ईमानदार आदमी वयस्क होने के बाद अपने पूरे जीवन में एक या दो बार से अधिक नहीं रोता। राम अपने पूरे वयस्क जीवन में दो या शायद केवल एक बार रोए। राम और कृष्ण के देश में ऐसे लोगों की भरमार है जिनकी आंखों में बराबर आंसू डबडबाए रहते हैं और अज्ञानी लोग उन्हें बहुत भावुक आदमी मान बैठते हैं। एक हद तक इसमें कृष्ण का दोष है, वे कभी नहीं रोए लेकिन लाखों को आज तक रुलाते रहे। जब वे जिंदा थे वृंदावन की गोपिकाएं इतनी दुखी थीं कि आज तक गीत गाते जाए हैं। निसदिन बरसत नयन हमारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। उनके रुदन में कामना की ललक भी झलकती है लेकिन साथ ही साथ इतना संपूर्ण आत्मसमर्पण है कि स्व का कोई अस्तित्व नहीं रह गया हो। कृष्ण एक महान प्रेमी थे जिन्हें अद्भुत आत्मसमर्पण मिलता रहा और आज तक लाखों स्त्री पुरुष और स्त्री वेश में पुरुष जो अपने प्रेमी को रिझाने के लिए स्त्रियों जैसा व्यवहार करते हैं उनके नाम पर आंसू बहाते हैं और उनमें लीन होते हैं। ये अनुभव कभी कभी राजनीति में आ जाता है और नपुंसकता के साथ साथ जाल फरेब शुरू हो जाता है। जन्म से मृत्यु तक कृष्ण असाधारण, असंभव और अपूर्व थे। उनका जन्म अपने मामा के कैद में हुआ जहां उनके माता और पिता जो एक मुखिया थे बंद थे। उनसे पहले जन्मे भाई और बहन पैदा होते ही मार डाले गए थे। एक झोली में छिपाकर वे कैद से बाहर ले आए गए। उन्हें यमुना के पार ले जाकर सुरक्षित स्थान में रखना था। गहराई ने गहराई को खींचा, यमुना बढ़ी और जैसे जैसे उनके पिता ने झोली ऊपर उठाई यमुना बढ़ती गई जब तक कि कृष्ण ने अपने चरण कमल से नदी को छू नहीं लिया। कई दशकों के बाद उन्होंने अपना काम पूरा किया। उनके सभी परिचित मित्र या तो मारे गए या बिखर गए। कुछ हिमालय और स्वर्ग की ओर महाप्रयाण कर चुके थे। उनके कुनबे की औरतें डाकुओं द्वारा भगाई जा रही थीं। कृष्ण द्वारिका का रास्ता अकेले तय कर रहे थे। विश्राम करने वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की छाँव में रुके। एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का शरीर समझकर बाण चलाया और कृष्ण का अंत हो गया। उन्होंने उस क्षण क्या किया? क्या उनकी अंतिम दृष्टि करुणा में मुस्कान के साथ जो समझ से आती है शिकारी पर पड़ी? क्या उन्होंने अपना हाथ बांसुरी की ओर बढ़ाया जो अवश्य ही पास में रही होगी और क्या उन्होंने बांसुरी पर अंतिम दैवी आलाप छेड़ा या मुस्कान के साथ हाथ में बांसुरी लेकर ही संतुष्ट रहे? उनके दिमाग में क्या क्या विचार आए? जीवन के खेल जो बड़े सुखमय यद्यपि केवल लीला मात्र थे या स्वर्ग से देवताओं की पुकार जो अपने विष्णु के बिना अभाव महसूस कर रहे थे?
0: विचार बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृष्ण के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं पशुओं में विषाणु जनित रोग एवं निदान विषय पर डॉक्टर जेम्स सिंह से दिव्य विकास सिंह की बातचीत।

0: किसान भाई हरेन कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करत हैं। जैसे मनई में रोग बीमारी होत है, वही कतिन पशुअन में भी रोग बिरामी होत है। आज अपने कार्यक्रम में पशु डॉक्टर जेम सिंह का स्वागत है। आइए इनसे पशु में हो वाले प्रमुख रोग और उनके उपचार के बारे में जानकारी लेवें। तो डॉक्टर साहब, ये बतावें आप कि पशुअन में कौन कौन प्रमुख रोग होते हैं?
1: पशुओं में बहु रोग और फैलते हैं, बहुत सारे बीमारियां हैं। पहले वाले तो लंगड़ा बुखार बोलते हैं उसको, और उसके साथ साथ मिल्क फीवर एक दूसरी बीमारी है, और गला घोटू ये तीसरी वाली बीमारी है, और थनेला और मिल्क फीवर ये बहुत घातक बीमारियां होती है इसमें।
0: डॉक्टर साहब, गला घोटू जौन होत है वो बरसात के मौसम में फैलत है, तो थोड़ा सा जो ओकरे बारे में किसान भाई लोगन के जानकारी दे देवें।
1: हाँ, गला घोटू जो होता है और गाय भैंस को ज़्यादा परेशान करते हैं। इसका प्रकोप ज़्यादातर बरसात में ही होते हैं। पेस्टोरेला मल्टोसिडा एक बैक्टीरिया है, उसी से ये रोग जो फैलता है।
0: अच्छा, इका जो लक्षण का होत है?
1: इनका लक्षण जो है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु स्वस्थ हो जाता है, पशु का गला सूज जाता है, खाना निगलने में कठिनाई होती है, पशु का सांस लेने में तकलीफ होती है, और पतला लैट्रिन भी करते हैं। बीमारी पशुओं को 6 से 24 घंटे के भीतर मर जाते हैं, और सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो।
0: डॉक्टर साहब, जौन हो एका रोकथाम का उपाय करल जाए जौन हो?
1: इनका रोकथाम बा वो टीकाकरण कर सकते हैं। बरसात से पहले हम लोग टीकाकरण करें तो वो बहुत ज़्यादा रोकथाम का एक सिलसिला है। और उसके साथ साथ एनिमल्स को कभी बीमार भी हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट में जैसे हम बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक यूज़ करके एनिमल्स को काफ़ी तरीके से राहत दिला सकते हैं। उस एनिमल्स में क्या होता है कि दर्द और बुखार भी होता है।
0: डॉक्टर साहब, जौन है आप बताए रहे कि लंगड़ा बुखार होता है, एकरे बारे में जौन है किसान भाई लोगन के कुछ जानकारी दे दें।
1: हाँ, लंगड़ा बुखार जो होता है, ये रोग भी ज़्यादा बरसात में ही होते हैं। ये खासकर 6 महीने से 18 महीने के स्वस्थ पशुओं को ही अपना शिकार बनाते हैं, और ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ से भी होता है। उसका बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम चिपोइट्स कहा जाता है, और उसका जो लक्षण जो होता है, इस रोग से पिछला पुट्ठा सूज जाता है, पशु लंगड़ाने लगते हैं, किसी किसी पशु को अगला पैर भी सूज जाता है। सूजन धीरे धीरे शरीर के दूसरी भाग में भी फैल सकती है। सूजन में काफ़ी पीड़ा होती है तथा उसके दबाने से चुरचुराहट के आवाज़ आती है। शरीर का तापमान 104 से 106 डिग्री होता है, बाद में सूजन सर भी जाते हैं।
0: अच्छा, तो एका जौन है रोकथाम का उपाय हो?
1: रोकथाम का यही उपाय है कि इसका भी बस टीकाकरण ही इसका रोकथाम का उपाय है। और कभी हम लोग ये बीमारी काफ़ी हो गया तो हम लोग इसका उपचार भी दे सकते हैं। उसके लिए अच्छे से हम लोग एंटीबायोटिक है वो सब यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग दर्द और बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल भी यूज़ कर सकते हैं, और सूजन को कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोपिडोन एसीटेट, उसके साथ साथ वो ताकत का इंजेक्शन जो है लगा सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी लगा सकते हैं
0: डॉक्टर
1: हम लोग।
0: साहब, जौन हो एक ठे बीमारी पशुअन में खुरपका मुंहपका होले, ये बहुत ज़्यादा जौन है पशु ऐसे परेशान होते हैं, किसान भाई भी ऐसे बहुत परेशान होते हैं जब पशुअन में हो जाता है, तो एक के बारे में भी आप किसान भाई हरन के थोड़ा जानकारी दे दें।
1: हाँ।

0: ये बहुत घातक बीमारी है, ये वायरस से फैलता है। ये वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी, सेट ए, सेट वन, सेट थ्री, द एशिया वन जो वायरस नामक है उसी से ये फैलता है। ये रोग
1: अच्छा
0: बहुत ही लड़छूट है, संक्रामक, बहुत तेजी से होता है। मरने
1: इनका
0: का
1: लक्षण का कहा?
0: इनका जो लक्षण जो होता है, बुखार हो जाना, भोजन में अरुचि, मुंह और खुर में पहले छोटे छोटे दाने निकलना और बाद में पक कर घाव हो जाना आदि इस रोग का लक्षण है।
1: अच्छा, तो एका रोकथाम का उपाय है इहो बता देवे आप।
0: ये बस रोकथाम जो है होता है, ये बरसात से पहले हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं, उसके उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल है हमारे इंडिया में। पहले हम सक्सेस जो ट्रीटमेंट है मैं बताना चाह रहा हूँ। मुंह के छालों को फिटकरी से 2% घोल सा साफ किया जा सकता है और पैरों के घाव को टिंचर आयोडीन या पोविडीन पोविडीन से साफ किया जाता है। पैर में तुलसी अथवा नीम की पत्ती का लेप भी फायदेमंद साबित होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जौन है किसान भाई हरेन जौन है, जौन दुधारू पशु हैं, जौन दूध देते हैं, उम्मा जौन है एक ठो रोग होता है थनैला, जौन आप बताए रहें ओके बारे में थोड़ा जानकारी दे देवें।
0: थनेला जो होता है दुधारू पशुओं में ज़्यादातर होते हैं। ये जो बीमारी होते हैं वो दो तरीके से बीमारी हो सकता है। ये थन में जब कट जाता है या चोट लग जाता है तब ये होता है, और एक और है संक्रामक जीवाणुओं का थन पे प्रवेश करना, ये इससे भी हम लोग जो थनेला होने का एक चांसेस हो जाता है।
1: तो थनैला बीमारी के डॉक्टर साहब लक्षण का हो ये बता दे हैं किसान भाई हरिन के, तो थोड़ा सा उनके समझे में बीमारी के बारे में जानकारी लेवे में सुविधा हो जाए।
0: हाँ, थन गरम गरम और लाल हो जाता है, उसमें सूजन होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, भूख ना लगना, दूध का उत्पादन में कमी आ जाना, दूध का रंग बदल जाना तथा दूध का जमावा हो जाना इस रोग का खास लक्षण है।
1: डॉक्टर साहब जो न थनैला बीमारी के रोकथाम के उपाय के बारे में भी आप जानकारी दे दें।
0: हाँ, मैं इसको जानकारी देना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग अच्छे से एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, उसके साथ साथ दर्द और बुखार को कंट्रोल करने के लिए टॉल्फिनेमिक एसिड यूज़ करना चाहिए, और जो थन में जो सूजन है उसको कंट्रोल करने के लिए आइसोफ्लोबिडोन एसिडेट यूज़ करना चाहिए, और दूध का कमी जो आते हैं उसको भरपूर करने के लिए फॉस्फोरस का इंजेक्शन भी लगाना चाहिए, और थन को जो आइस है उसी से मसाज करना भी चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बीमारी पशुओं में बहुत ही जौन ज़्यादा पावल जाले ओका नाम है मिल्क फीवर, एका बारे में भी आप थोड़ा जौन किसान भाई हर उनकी जानकारी दे देवें।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़्यादातर जो है दुधारू पशुओं में ज़्यादातर होता है, ये ज़्यादा दुधारू पशुओं में होते हैं। ये बीमारी अपना शिकार बनाते हैं अपने दुधारू पशुओं के। ये बीमार जो होता है ये बच्चा देने के बाद 24 घंटे के बाद ये लक्षण दिखाना चालू करते हैं।
1: अच्छा, एका लक्षण का हो जौन है?
0: पशु बेचैन होता है, पशु कांपना और लड़खड़ाने लगता है, मांसपेशियां में कंपन होते हैं जिसके कारण पशु खड़ा नहीं हो पाता है, और मुंह सूज जाता है, तापमान सामान्य रहते हैं या उसका कम हो जाते हैं। पशु सीने के पहले जमीन पर बैठना और उसके गला शरीर के ओर मोड़ लेते हैं। चिकित्सक नहीं करें तो कोई कोई पशु 24 घंटे के अंदर मर भी जाते हैं।
1: अरे तब तो बहुत खतरनाक बीमारी है डॉक्टर साहब, एका रोकथाम का जौन है उपाय भी आप बता देवें किसान भाई हरन से।
0: हाँ, उपाय हम बताएंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी है, तो उसके लिए हम लोग जो नस है, गाय का नस है, उसमें
1: हाँ
0: कैल्शियम या मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट हम लोग चला सकते हैं। वो कम से कम 1 बोतल 2 बोतल तो चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ताकत आवे इसलिए फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगाओवे, और उसको आइसोफ्लोपिडोन या डेक्सामिथाजोन या बीटामिथाजोन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन D3 का इंजेक्शन लगावे, उससे क्या होगा कि कैल्शियम को बोन में एब्जॉर्प्शन करने में मदद करे। उसके बाद B1 B6 B12 का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उससे मांसपेशियों को ताकत देते हैं।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब, आप जौन हो किसान भाई हरन के पशुअन के रोकथाम रोग और ओकरे जौन है रोकथाम बदी के बहुत अच्छा अच्छा जानकारी दहन।

अभी आप सुन रहे थे पशुओं में विषाणु जनित रोग एवं निदान विषय पर डॉक्टर जेम्स सिंह से दिव्य विकास सिंह की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद शहजाद की वार्ता, गठिया का आयुर्वेदिक उपचार।
1: आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसको गठिया के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी शब्द उसका अर्थराइटिस है। गठिया एक ऐसी समस्या है जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, चलने में बहुत ज़्यादा परेशान करना, ये सारी समस्याएं गठिया में होती हैं। आयुर्वेद में इसका स्वरूप अगर हम देखते हैं तो इसको वात रोग से जाना जाता है और गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे भी आज के टाइम पे ग्रसित होते हैं। गठिया यानी अर्थराइटिस, जिसको दो प्रकार से लोग जानते हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें या एलोपैथ के लैंग्वेज में बात करें तो उसको ऑस्टोअर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस और गठिया, ये दोनों सिमिलर बीमारियां हैं जिसमें जोड़ों की लिगेमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, जोड़ों में अकड़न हो जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं चलने में, उठने में, बैठने में। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में गठिया के लिए बहुत ही आसान से उपाय हैं जिसमें अश्वगंधा सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। अश्वगंधा ये शरीर में ताकत बढ़ाने का काम करती है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है और सूजन को भी ख़त्म करती है। दूसरा, अगर हम औषधि की बात करें तो गुगुल सबसे महत्वपूर्ण औषधि है इसमें। गुगुल एक ऐसी औषधि है जिसमें दो तरीके की गुगुल पाई जाती है, योगराज गुगुल और महायोगराज गुगुल। इनका उपयोग आयुर्वेद में जोड़ों की सूजन, दर्द और अकड़न को ख़त्म करने में की जाती है। तीसरी औषधि की अगर हम बात करें आयुर्वेद में तो हल्दी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। हल्दी में जो प्रचुर मात्रा में उसके मिनरल्स पाए जाते हैं वो आमतौर पर देखा गया है कि सूजन को ख़त्म करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तीसरी अगर हम बात करें औषधि की तो मेथी और लहसुन है। मेथी और लहसुन बहुत ही उपयोगी होता है जो जोड़ों के दर्द को और लिगामेंट्स को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। गठिया का सबसे महत्वपूर्ण अगर रूप देखा जाए तो गठिया हमारे आज के लाइफस्टाइल से बहुत चीज़ें होती हैं, लाइफस्टाइल हमारी मेंटेन नहीं होती हैं, इसी वजह से गठिया का रोग हर किसी में पाया जाता है। गठिया में सबसे मेन अगर हम देखें रोग होता है तो खाना, जब हम खाते हैं तो खाने को बराबर तरीके से चबा के नहीं खाते हैं, जो प्रॉपर खाने का मिक्सचर होना चाहिए हमारे गट हेल्थ में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। खाने के साथ में हम पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आज के जीवनचर्या में हम देखें तो ज़्यादातर कोशिश यही लोग करते हैं कि ठंडा पानी पिएं, और ठंडा पानी गठिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तीसरा, अगर आज की लाइफस्टाइल में देखें तो अनिद्रा, जो नींद कम आना, लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो जाना, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाना, ये गठिया को बढ़ावा देने का काम करता है। बेसिकली अगर गठिया को हमें ख़त्म करना है तो आयुर्वेद अपनाना है, और आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो करके गठिया से बहुत बेहतर तरीके से बचा जा सकता है। जैसे अगर हम काढ़ा बनाने की बात करें तो अदरक सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। अदरक, हल्दी, लहसुन, इन तीनों को बराबर मात्रा में

0: लेके गरम पानी में अच्छे से बॉईल कर लें, अच्छे से उबाल लें, उसका एक काढ़ा बना लें। उसमें स्वाद अनुसार अगर आपको नमक ऐड करना है, अगर आप बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, बीपी अगर आपकी नॉर्मल है, तो उसमें आप नमक मिला सकते हैं, नहीं तो शहद का उपयोग कर सकते हैं। सुबह और शाम इसको लेने से गठिया में बहुत हद तक लाभ मिलता है। तीसरा, घर पे ही बहुत जगह पे देखा जाता है कि लोग तेलों का प्रचार करते हैं, लेकिन गठिया में इस्तेमाल करने के लिए तेल आप घर पे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए जो औषधि का इस्तेमाल किया गया है वो हमारे किचन में मौजूद है। लाल मिर्च लेना है 10 ग्राम, लहसुन लेना है 10 ग्राम, अदरक लेना है 10 ग्राम, हल्दी लेना है 10 ग्राम और अजवाइन लेना है 10 ग्राम। इन सारी औषधियों को मिला के 100 ग्राम तिल का तेल लेना है, जिसमें बराबर मात्रा में सारी औषधियों को मिला के पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो उसको छान के किसी कांच के बर्तन में रख लेना है और सुबह और शाम इसकी हल्की सी मालिश करना है, और जहाँ पे दर्द है आपके वहाँ पे उसको गर्म कपड़े से ढक देना है, तो गठिया में बहुत हद तक आपको आराम मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शेख मोहम्मद शहजाद की वार्ता, गठिया का आयुर्वेदिक उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। भारत और नीदरलैंड के मध्य हिडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री राम चरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर प्रियंका मलिक का गायन और दिन में 12:15 पर प्रेम जैन का गिटार वादन प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कलाकार होंगी करिश्मा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे शोभा लाल, प्रियंका चौहान और ब्रिजभान यादव। सुबह 11:00 सुनेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी डॉक्टर एसएस सिन्हा की बातचीत, कम उम्र में बढ़ती मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे 2:30 पर, शाम 5 बजे सुनेगा फिल्म संगीत। युवा श्रोता सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम शाम 5:15 पर। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस संगीत में पाठ।

पक्षीराज गरुड़ को श्रीराम की महिमा सुनाते हुए काकभुशुंडी वो प्रसंग छेड़ देते हैं जब स्वयं उनके अपने मन में संशय उत्पन्न हुआ था। प्रभु की ये बाण अर्थात अभिलक्षण है कि वे अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं पनपने देते और यदि ऐसा होता देखते हैं तो वैसा ही उपचार करते हैं जैसे एक माता अपने शिशु की पीड़ा की परवाह न करते हुए उसका घाव चिरवा देती है। काकभुशुंडी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करते हैं तब तब वे अवधपुरी जाते हैं। वहां श्री राम जन्मोत्सव देखते हैं और 5 वर्षों तक वहां निवास करके श्री राम की बाल लीलाएं देखने का आनंद प्राप्त करते हैं।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन, लीजिए सुनिए सुबह फिल्म का ये भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है सुधीर फड़के ने और रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नील कमल फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका

0: साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट ओडियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतरराष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब

0: छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है। आइए सुनते हैं प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन राग भैरवी में ठुमरी और दादरा।

अभी आप सुन रहे थे प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन राग भैरवी में ठुमरी और दादरा। उपशास्त्रीय गायन अब समाप्त हुआ। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र, हारमोनियम पर अनिल कुमार और तानपुरा पर विवेक सहगल, विवेक विशाल। उपशास्त्रीय गायन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए हिशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का

0: न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लग कर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न

0: हो। एनटीए इज कमिटेड,
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मोआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
2: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus.

ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के अहया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाकी राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत

0: भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियां में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अलावा साझेदारी कायम करने खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावा साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावा कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलावा यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अलावा साझेदारी में मुजाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियां इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं, जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। यह मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वाशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेशीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अलाक़वामी साझेदारी कायम करने और खास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन अलावा शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावा साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजिन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सिफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी।

0: जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अलाक्वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेजी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहिया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मजकूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालिदैन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपए तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। NTA ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज और फरोग के तहत हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: जनवरी 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीम उशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीम उशान मुजस्मों, म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामा निगार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली, हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत

0: से शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में आईसीसी खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंघम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप एक के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप एक में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में कैलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने नीट UG दोबारा इम्तहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिर्फ फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन-अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हमारी जनगणना। अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ।

0: क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए पढ़ते हैं ये सुविचार। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हिम्मत मत हारो, क्योंकि सूरज भी हर रात के बाद फिर से चमकता है। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। ये सुविचार हमें विष्णु टेलर जी ने भेजा है। एडवोकेट वारिस अली जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। जीवन में दो लोग आपको समझ सकते हैं, एक वो आपके जैसे हालात से गुजर चुका हो और दूसरा जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हो। नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। कहती हैं, कब मिल जाए मंजिल किसी को ये मालूम नहीं, इंसान का नसीब चेहरे पे नहीं उसकी मेहनत पे लिखा होता है। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आप सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे सुविचार हमें भेजे हैं। और कुछ श्रोताओं के नाम हैं, दिनेश वर्मा, रामचंद्र मुखर्जी, राजीव मिश्रा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने प्यारे और अच्छे सुविचार भेजे। और श्रोताओं, अब आइए आते हैं अपने कार्यक्रम यानी अपने विषय पर। आज का हमारा विषय है भोजन की बर्बादी, एक गंभीर समस्या। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं भोजन की बर्बादी एक गंभीर समस्या है। अन्न यानी भोजन को ईश्वर का रूप माना गया है, लेकिन आज के आधुनिक और उपभोक्तावादी समाज में इसी अन्न की बर्बादी एक विकराल और गंभीर समस्या बन चुकी है। एक ओर जहां दुनिया के करोड़ों लोग रात को भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर शादियों, पार्टियों और होटलों घरों में हर साल लाखों टन भोजन कचरे के डिब्बे में दे दिया जाता है। या सिर्फ एक थाली के जूठन की बात नहीं है, बल्कि उस भोजन को उगाने में खर्च हुए पानी, श्रम, ईंधन और भूमि जैसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की भी बर्बादी है। भोजन का बर्बाद होना केवल एक सामाजिक या नैतिक अपराध नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जब बचा हुआ भोजन कचरा घरों में सड़ता है, तो उससे मीथेन नामक जहरीली गैस निकलती है, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। यह समस्या दर्शाती है कि हमारी व्यवस्था और सोच में कितनी बड़ी कमी है। इस गंभीर विषय पर गहराई से विचार करना, भोजन की बर्बादी को रोकना, जरूरतमंदों तक सही समय पर भोजन पहुंचाना सबसे बड़ी मांग है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये गीत, उसके बाद लौटेंगे अपने कार्यक्रम में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भोजन की बर्बादी की। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भोजन की बर्बादी का मुद्दा उठाया था। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। एक कड़वा सच भी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जो भोजन की बर्बादी को रोकने के काम आ सके। भोजन की बर्बादी से न केवल सरकार बल्कि सामाजिक संगठन भी चिंतित है। दुनिया भर में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई यानी लगभग 1 अरब 30 करोड़ टन बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे 2 अरब लोगों की खाने की ज़रूरतें पूरी हो सकें। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए बाजार जाने से पहले एक लिस्ट तैयार बनाएं और केवल वही चीज़ें खरीदें जितनी आपको आवश्यकता हो। खाना उतना ही बनाएं जितना आपके परिवार के लिए ज़रूरी हो। प्लेट में उतना ही खाना रखें जितना आप खा सकें।

श्रोताओं, भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए खरीदारी की योजना बनाना, सही मात्रा में खाना पकाना, बचे हुए खाने का दोबारा उपयोग करना, चीज़ों को सही तरीके से स्टोर करना और भोजन का दान करना सबसे प्रभावी तरीके हैं। भोजन की बर्बादी ना हो इसके लिए हमें आवश्यकता अनुसार ही पकाएं, बचे हुए खाने का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, भोजन को सही तरीके से स्टोर करें, सब्जियों और फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए उचित तापमान पर फ्रिज में रखें, ब्रेड जैसी चीज़ों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फ्रीज़र का उपयोग करें, किसी समारोह या घर में अधिक भोजन बच जाने पर उसे बर्बाद ना करें, ऐसे भोजन को ज़रूरतमंद लोगों को या किसी स्थानीय संस्था को दान करें। श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम इतना ही और कल आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: पापा लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।

0: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान। हमारी
2: जनगणना हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही।
6: आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना थी आनंद बख्शी की। लीजिए अब सुनिए बेवफा फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना बेवफा फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपको सुनवाते हैं आज अम्बेडकर नगर और बांदा जिले की हलचल, आइए सुनते हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अम्बेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अम्बेडकर नगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अम्बेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अम्बेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम

0: का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अम्बेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अम्बेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़करण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
1: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
0: अम्बेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अम्बेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गई। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन, काई, EDBE, वर्मी वेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।
2: अम्बेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
3: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
4: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है।

0: राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
1: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहाँ जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया
2: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज वन सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपदवासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। ये सबने इतना कोऑपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सबकी मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
1: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रगति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया, जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया। हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन करने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा,
3: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम न बढ़ाए। सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
1: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुटखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविष्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब कार्य अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। आपने सुन,
6: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। तो आइए सुनते हैं असगर गोंडवे की शायरी में सूफियाना आहंग। मकाला निगार है डॉक्टर जहांगीर हसन और कलाम शायर हैं ताजवर सुल्ताना। आइए सुनते हैं।
1: पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामेन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामेन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग और कलामी शायर के तहत सुनिएगा मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम। सबसे पहले समाद फरमाइए डॉक्टर जहांगीर हसन से।

0: जो खुदी और यकीन है, जो मोहब्बत और वारफ्तगी है, और जो इश्क के जज्बात व कैफियात हैं, वो एक इंसान को जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी मुस्कुराना सिखा देते हैं। और यही असगर गोंडवी की शायरी का असल जादू और कमाल है। असगर गोंडवी के यहाँ कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की पहचान और मार्फत का जरिया है। उनका मानना है कि सूफी वो नहीं होता जो दुनिया को छोड़कर जंगलों और बयाबानों में निकल जाए, बल्कि सूफी वो होता है जो दुनिया के हुजूम और बंदगाने खुदा के बीच रहकर भी अपने दिल को याद इलाही से शादो आबाद रखे। असगर गोंडवी के यहाँ ऐसे अशार की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें हुस्न कायनात की हकीकत और मारफत इलाही के मजामीन बतौर खास महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे अशार के पर्दे में असगर कायनात को एक धोखा, फरेब और बेसबाती के तौर पर पेश करते हैं, जबकि हर एक शय में तजल्लियात रब्बानी को कारफरमा मानते हैं। चुनांचे असगर गोंडवी इसी फलसफे को निभाते हुए कहते हैं, आँख हो जब महव हैरत तो नुमाया है वही, फिक्र हो जब कार फरमा तो वही मस्तूर है, जो नक्श है हस्ती का धोखा नजर आता है, पर्दे पे मुसव्विर ही तन्हा नजर आता है। गालिब की तरह असगर ने कभी भी दावे तसव्वुफ तो नहीं किया, मगर इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि उनकी शायरी में सूफियाना आगही भी है और बेसाख्तगी भी, अर्दियत भी है और हकीकत पसंदी भी, जमालियाती रंगो नूर भी है और सरशारी व दिलदोजी के साथ हुस्न व रानाई भी। असगर की यह हकीकत बयानी काबिल दीद भी है और काबिल सद आफरी भी के जर्रों का रक्स मस्ती ये शहबाय इश्क है, आलम रवां दवां बतकाजाय इश्क है, जब ये नहीं तो खत्म है रंगीनियां तमाम, साजे खुदी में जोश नवाहाय इश्क है। इलावा अजीं असगर गोंडवी के यहाँ उमर खय्याम की ला अदरियत भी मौजूद है, मौलाना रूम के मनाजिर फितरत की सरमस्ती भी है और हजरत हाफिज का बादा सागर भी, लेकिन इन तमाम हकायक के बावजूद वो कुराना तकलीद से कोसों दूर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी नुदरत पसंद और अखाज तबीयत ने अपनी राहें खुद तलाश की हैं। ला अदरियत, मुनाजिर फितरत और बादा सागर के पर्दे में ये हुसन तखयल देखें कि तमाम दफ्तर हिकमत उलट गया हूँ मैं, मगर खुला न अभी तक कहाँ हूँ क्या हूँ मैं, साकी तेरी निगाह को पहचानता हूँ मैं, मुझको फरेबे सागर व मीना न चाहिए, गर्क हैं सब इल्म हिकमत दीन व ईमा देखिए, किस तरह उठा है एक सागर से तूफान देखिए। एक बात और जो शोरा के हजूम में भी असगर को इनफरादियत अदा करती है वो है उनकी शेरियत। दकीक से दकीक, हकीमाना और फलसफियाना ख्यालात, पेचीदा से पेचीदा असरार व मआरिफ और लतीफ़ से लतीफ़ नुक्ता संजी में भी उनके यहाँ शेरियत अपनी जाहो जलाल और वकारियत के साथ जलवा फरमा रहती है। चुनांचे उनका ये अंदाज़े बयान देखें कि एक कतरे शबनम पर खुर्शीद है अक्स आरा, ये नेस्ती वो हस्ती अफसाना है अफसाना, लो शमे हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानोस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। इन जैसे अशार में बड़े ही हकीमाना तौर पर ज़ात मुतलक और वजूद मुतलक की हकीकत बयान की गई है, और ये बावर भी कराया गया है कि मुस्तकिल जलवा सिर्फ ज़ात मुतलक का है, उसके अलावा तमाम रंगीनियाँ कल अदम हैं या फिर उसी के जलवे और मज़ाहिर हैं। आज जब हम मादी दौर, नफसियाती इज़्तिराब और ज़हनी तनाव के साये में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे में असगर गोंडवी की सूफियाना शायरी हमारे दिलों के लिए एक मरहम की हैसियत रखती है। उनका कलाम हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के हंगामों से निजात पाने का वाहिद और तन्हा जरिया अपने अंदर की दुनिया को रोशन करना है। बिलाशुबह असगर गोंडवी की गजलें हमें अमन व अमान, मोहब्बत व उल्फत, चैन व सुकून और खुदा की ज़ात पर कामिल एतमाद और तवक्कुल का दर्स देती हैं। उन्होंने गजल के रिवायती रंग को तसव्वुफ के नूर से मामूर किया और उर्दू अदब को वो मेराज अता की कि जिस पर हमेशा नाज किया जाता रहेगा, जिसे लेना हो आकर उससे अब दरसे जुनून ले ले, सुना है होश में है असगरे दीवाना बरसों से।
1: अभी आप मकाला समाअत फरमा रहे थे और अब समाअत फरमाइए मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम।
2: गजल का मतला हाजिर कर रही हूँ, मुलायजा कीजिएगा। रस्म

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है।

0: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे यातायात अनुशासन और सुरक्षित शहर की। यातायात अनुशासन और सुरक्षित शहर एक दूसरे के पर्याय हैं। अनुशासित यातायात नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है, जाम से मुक्ति मिलती है और एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और खुशहाल शहरी परिवेश का निर्माण होता है। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या ने यातायात की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। सड़कों पर अनुशासन की कमी के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। एक सुरक्षित शहर की कल्पना बिना यातायात अनुशासन के नहीं की जा सकती। जब नागरिक नियमों का पालन करते हैं तो शहर न केवल सुरक्षित बनता है बल्कि उसका विकास भी तेजी से होता है।

सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति, चाहे वह चालक हो पैदल यात्री, की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने की कुंजी है। यह केवल कानूनी बाध्यता नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है। यातायात का पालन करना केवल कानूनी मजबूरी नहीं बल्कि यह दूसरों के जीवन के प्रति हमारी नागरिक जिम्मेदारी भी है। धैर्य बनाए रखना और पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग पर प्राथमिकता देना यातायात अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर में इस समय यातायात संबंधी अनगिनत समस्याएं हैं। समय के साथ वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके चलते धीरे धीरे अनुशासनहीनता बढ़ती गई और अब यह स्थिति गंभीर हो चुकी है। लेन प्रणाली का अभाव और चौराहों पर बने क्रॉसिंग भी स्थिति को खराब कर देते हैं। सड़कें संकरी हैं, वाहनों की संख्या बढ़ने से और भी समस्याएं हो रही हैं। यातायात नियमों का पालन न करना एक बड़ी समस्या है जो हर अच्छे प्रयास को विफल कर रही है। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालक मच्छरों की तरह हर दिशा में दौड़ते हैं, जिससे सड़कों पर खुद को और दूसरों को खतरा होता है। परिणामस्वरूप सुधार के लिए कई पहल लागू करने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं वर्षों से उसी स्तर पर बनी हुई हैं। समस्या की जड़ लोगों की मानसिकता है। उन्हें जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को समझना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्हें कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

आज के आधुनिक युग में यातायात एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर घंटों जाम लगा रहता है। प्रदूषण जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इन समस्याओं का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन को कहीं ना कहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी पड़ता है। यातायात जाम से लोगों का समय और ऊर्जा दोनों की हानि होती है, जिससे वेतन भोगी लोग काम पर देर से पहुंचते हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा आती है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं जान माल की भारी क्षति का कारण बनती है। प्रदूषण के कारण औसत व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सांस संबंधी रोग। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और नागरिक दोनों को प्रयास करना आवश्यक है। पहले तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों की बजाय बस, मेट्रो और ट्रेनों का उपयोग करें। दूसरी ओर सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना, नई सड़क और पुलों का निर्माण करना भी फायदेमंद होगा।

यदि हम इन सड़कों के बनाए गए नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन भी बच सकता है और हम लोगों का जीवन भी बचा सकते हैं। किसी दुर्घटना का शिकार हम स्वयं भी हो सकते हैं और हमारे कारण कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के पृष्ठ ऐसी दुर्घटनाओं की सूचनाओं से भरे रहते हैं जो हृदय को द्रवित कर देते हैं। ऐसे में सुरक्षित यातायात के विषय में जानना और उसके नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था में वाहन ना चलाएं। वाहन सदैव अपनी पंक्ति में चलाएं। वाहन मोड़ते समय आवश्यक संकेत इंडिकेटर दें और हॉर्न बजाएं। रुकते समय उपयुक्त संकेत अवश्य दें। वाहन की निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को ना बैठाएं। स्कूल, अस्पताल, चौराहों आदि के समीप पैदल यात्रियों का ध्यान रखते हुए अपने वाहन की गति धीमी रखें। चकाचौंध करने वाली हेडलाइटों का प्रयोग ना करें। हेडलाइट का ऊपरी आधा हिस्सा काले रंग से रंगा होना चाहिए। सुरक्षित यातायात के नियम, बाईं ओर चलें, हेलमेट का प्रयोग करें। दोपहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि को चलाते समय तथा उस पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनने के लिए ज़रूर बोलें। निर्धारित गति सीमा में ही चलें। अधिकतर दुर्घटनाएं तेज गति वाले वाहन के कारण ही होती हैं।

यातायात के नियम केवल सजा से बचने के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सड़क पर केवल वाहन चलाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचना मुख्य लक्ष्य है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी की इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए यातायात अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। एक अनुशासित नागरिक ही एक सुरक्षित विकसित और आदर्श शहर की नींव रखता है। तो श्रोताओं छोड़े चलते हैं आपको इस गीत के साथ, सुनते रहिए ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, आज का हमारा विषय था यातायात, अनुशासन और सुरक्षित शहर। कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। आज के कलाकार हैं शोभा लाल और साथी, प्रियंका चौहान और ब्रिजभान यादव और साथी। पहले आपको सुनवा रहे हैं शोभा लाल और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शोभा लाल और साथी के स्वर में लोकगीत। अब लीजिए सुनिए प्रियंका चौहान के स्वर में लोकगीत। आइए सुनते हैं ये लोक भजन।

अभी आपने सुना ये गंगा गीत, कलाकार थी प्रियंका चौहान। लीजिए अब सुनिए ब्रजभान यादव और साथियों के स्वर में ये लाचारी गीत।

0: अभी आप बृजभान यादव और साथी के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। श्रोताओं नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे मशहूर प्लेबैक सिंगर महालक्ष्मी अय्यर की जिंदगी, उनकी संगीत यात्रा, उनके जीवन की कुछ दिलचस्प बातें और सुनेंगे उनकी सुरीली आवाज में कुछ बेहतरीन नगमे। और इस सफर में मैं अतुल यादव आपका साथ दूंगा। श्रोताओं, महालक्ष्मी अय्यर का जन्म 11 जुलाई 1976 को मुंबई में हुआ था। माँ का जुड़ाव शास्त्रीय संगीत से था और दक्षिण भारतीय संगीत परंपरा का परिवार पर खासा प्रभाव था। और यही कारण था कि महालक्ष्मी अय्यर को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, या फिर यूं कहें कि संगीत सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन गया था।

श्रोताओं, 90 के दशक का आखिर चल रहा था। महालक्ष्मी अय्यर को पहला बड़ा मौका मिला। फिल्म थी दस। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसी दौर में उन्हें ए आर रहमान और शंकर एहसान लॉय के साथ काम करने का मौका मिला। दस फिल्म बाद में चल के रिलीज जरूर हुई, लेकिन जो शुरुआती मौके की बात कही जाती है तो उसमें इस फिल्म का नाम होते हुए भी शामिल नहीं किया जा सकता। फिलहाल धीरे धीरे संगीतकारों ने उनके टैलेंट को रिकग्नाइज किया। एक ऐसी आवाज जिसमें शास्त्रीयता के साथ साथ आधुनिकता भी थी।

साल 2000 के बाद महालक्ष्मी अय्यर बॉलीवुड के स्थापित आवाज़ बन चुकी थीं। उन्होंने कई बड़े बैनर्स और नामी संगीतकारों के साथ काम करना शुरू किया। खासतौर पर यशराज फिल्म्स में उनकी आवाज़ खूब सुनाई दी। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वे रोमांटिक गीतों, सूफियाना अंदाज, लोक धुनों और आधुनिक संगीत हर शैली में सहज दिखाई पड़ीं।

0: हुई।
1: श्रोताओं, माँ लक्ष्मी अय्यर को उनके करियर के शानदार सफर में कई पुरस्कार मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर, कौन भूल सकता है गीत जय हो को, जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था। और इसके बाद रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा महालक्ष्मी अय्यर को उनकी गायकी के लिए आधिकारिक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हालांकि इस गीत के लिए जो ऑस्कर मिला वो गीत और संगीत के लिए मिला था। इसी गाने के लिए गुलजार और एआर रहमान, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए वर्ल्ड साउंड बैक रिकॉर्ड साझा किया था। साथ ही असमिया फिल्म राघव, जिसका एक गाना था शिलमिल सुपनीते, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर अवार्ड महालक्ष्मी अय्यर को मिला था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, सुनते हैं स्लमडॉग मिलियनेयर का यह आइकॉनिक सॉन्ग।

श्रोताओं, शुरू में महालक्ष्मी अय्यर अंडररेटेड कलाकार के रूप में काम करती रहीं, लेकिन जय हो सॉन्ग के बाद जो ख्याति उन्हें मिली तो वे एक जाना हमारा नाम बन चुकी थी, एक पहचान बन चुकी थी। अब उन्हें किसी के परिचय की मोहताज नहीं रह गई थी। हालांकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो महालक्ष्मी अय्यर हमेशा से लो प्रोफाइल कलाकार रहीं। वे पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करती थीं। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो डिसिप्लिन और विनम्रता, यही वो उनकी खासियत थी जिसने उन्हें सबका अजीज बना दिया था।

आज जब नई पीढ़ी के कलाकारों की बात होती है तो माँ लक्ष्मी अय्यर का नाम उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने सुरों की शुद्धता और भावनाओं की गहराई को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने साबित किया कि लोकप्रियता केवल ऊंची आवाज से नहीं बल्कि सच्चे एक्सप्रेशन से मिलती है।

सादगी और सुरों की गरिमा, इन तीन शब्दों में यदि किसी गायिका को परिभाषित करना हो तो महालक्ष्मी अय्यर का नाम आप ले सकते हैं। सुर्खियों से दूर लेकिन अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली, यही है महालक्ष्मी अय्यर की पहचान। प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।

0: फिल्म संगीत एक ही कलाकार। अभी आप सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर की बातें और उनके गाने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत। श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर मैं अतुल यादव।
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए।
0: आज की इस महफिल में हमने सजाए हैं ऐसे गीत जिनमें प्यार है, इंतजार है, खूबसूरती है, शायरी है और दिल को छू लेने वाले जज्बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यार भरे सफर को।

श्रोताओं, जब प्यार पहली बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है। बादल, हवाएं, चांद, सितारे सब अपने लगने लगते हैं। किशोर कुमार की जादुई आवाज में सजा ये गीत आज भी रोमांस की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है।

किशोरदा की आवाज़ ऐसा लगता है जैसे सीधे दिल में उतर जाती है। प्यार के रंगों से सराबोर ये गीत हमेशा ताजगी का एहसास देता रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे नगमे की ओर जो मोहब्बत की गहराई को बहुत ही सादगी से बयां करता है। जब कोई इंसान हमारी दुनिया बन जाता है तो उसकी आंखों के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही फीलिंग्स के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब का ये यादगार नगमा आपकी नज़र।

रफी साहब की आवाज़ एक अलग ही रूहानी असर होता है इस आवाज़ में। ये गीत केवल प्रेम गीत नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास की एक मिसाल है। दोस्तों, प्यार की दुनिया में आँखों का बड़ा महत्व होता है। कभी इन्हीं आँखों में सपने बसते हैं तो कभी इन्हीं में पूरी कायनात दिखाई देती है। अब बारी एक ऐसे गीत की जिसमें किसी की खूबसूरत आँखों की तारीफ बड़े ही दिलकश अंदाज में की गई है।

कभी कभी किसी की एक मुस्कान, एक नज़र या एक झलक पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। लेकिन हर कहानी सिर्फ खुशी की नहीं होती, कई बार दिल को टूटने का दर्द भी सहना पड़ता है। और जब दर्द सुरों में ढलता है तो कुछ ऐसे गीत जन्म लेते हैं जो सदियों तक याद रहते हैं।

महिम कपूर साहब की दर्द भरी आवाज़, ये गीत मोहब्बत के उस एहसास को बयां करता है जहां दिल को ठेस तो पहुंचती है मगर प्यार फिर भी कम नहीं होता। सच कहा गया है कि प्रेम इंसान को मजबूत भी बनाता है और संवेदनशील भी। महिम कपूर साहब का दर्द, या यूं कह लें कि उनकी आवाज़ में जो ये दर्द था, वो इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर, और ये गीत उन लोगों के लिए जो अपनी भावनाओं को शब्दों में तो ढालना जानते हैं लेकिन खुद को शायर कहने से हिचकते हैं। कहते हैं ना, दिल की बातें जब गीत बन जाएं तब ऐसी ही रचनाएं जन्म लेती हैं।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हमने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हैं कलाकार चिराग, सागर, हमराज और बॉबी। तो श्रोताओं, इस प्रोग्राम में प्यार के अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश की हमने। कहीं सपनों भरा रोमांस, कहीं समर्पण, कहीं खूबसूरती की तारीफ, कहीं दर्द और कहीं दिल की अनकही बातों का इजहार। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। फटाफट से अपनी पेन उठाइए, कलम उठाइए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे डालिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए

0: विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जी एनएच राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। भारत और नीदरलैंड्स के मध्य हिंडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम दिल्ली से रिले करेंगे शाम 6:30 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर आप सुनेंगे प्रेम जैन का गिटार वादन। साढ़े 12 बजे का समय होगा श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों के प्रोग्राम हेलो फरमाइश का।

1:15 पर महिलाएं अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आज सुनेंगी डॉक्टर एस एस सिन्हा से की गई बातचीत। विषय होगा कम उम्र में बढ़ती मायोपिया। 2:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। शाम 5 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम। युवा साथी अपने कार्यक्रम युवाणी में 5:15 पर सुनेंगे आंशिक रूबे की अंग्रेजी वार्ता इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फेस्टिवल इन आवर लाइफ। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रेम जैन का राग मधुमा सारंग में गिटार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रेम जैन का राग मधुमात सारंग में गिटार वादन। अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: हेलो।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, जिला प्रयागराज से गांव मुगरा, जिला प्रयागराज से प्रियांशु यादव बोल रहे हैं। मैम,
0: हाँ जी बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है बॉर्डर, घर
0: हाँ
1: गाने का बोल है घर कब आओगे।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत लीजिए, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला है दीदी, मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी ने मध्य प्रदेश से हमें कॉल की है, बहुत बहुत स्वागत। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: दीदी? आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा सिलम, और उसमें एक गीत है पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जरूर सुनवाएंगे मनोज जी, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते आप?
1: दीदी नाम तो हमारे श्रोता हैं, सभी श्रोता हमारे फोन लगाते हैं
0: जी।
1: तो नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन गाना सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए तो आपकी तरफ से सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं के लिए लीजिए, सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं गुलाब जी?
1: हम तो इसलिए ब्लाइंड है, फिल्म पुकार का गीत सुनना चाहते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: चलिए, बहुत अच्छा देशभक्ति गाना है ये। आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है उपकार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे सर पर। आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे सर पर। गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल। नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: जी, जिला प्रतापगढ़ से हमें फोन किया है राजेंद्र जी ने। तो राजेंद्र जी की पसंद का कौन सा गाना है?
1: फिल्म का नाम है तीन देवियाँ।
0: अच्छा जी, गाने के बोल बताइए।
1: लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना,
0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है।
1: जी मैम जी।
0: तो चलिए, आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं तीन देवियां फिल्म का ये गीत।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी,
1: मैम रोशनी बोल रही हूँ।
0: जी जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम रास।
0: रास का कौन सा गाना है?
1: नहीं, अगर सामने आ भी जाया तो राज नहीं है कि तुम मुझसे।
0: बहुत सुपर हिट फिल्म रही है और गाने भी सुपर हिट रहे हैं, तो रोशनी जी की पसंद का रास फिल्म का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मानवता को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को

0: new economy, innovation, and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, three new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकर्रे लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
2: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े खाने थे कुल 14,000 इतनी बड़ी आबादी का राज्य एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। लाखों नौजवानों को यहाँ नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल आने वाले त्योहारों रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वजीर आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों गुमराह किन मालूम या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्जे हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम

0: اساتذہ، شکشا وتر، انسٹرکٹرز اور غیر تدریسی عملہ 22، 23 اور 24 جون کو اسکولوں میں موجود رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو نیوز اس موضوع پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے، ترقی، اعتماد اور عوامی بہبود کے 12 سال۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم ملکی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومتی کوششوں پر بات کر رہے ہیں۔
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
0: आज मुहर्रम महीने की यकुम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को कर्बला में शहीद कर दिया गया था। आज यकुम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस शाम 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वन डे सीरीज में नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की क्यादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी की सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता बंधुओं को प्रीति
1: और शारदा का प्यार भरा
0: नमस्कार। आप इस छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे हैं और इस एंजॉयमेंट को हम बढ़ाएंगे अपने कार्यक्रम के साथ, पर साथ ही साथ होगी ढेर सारी काम की बात, पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

0: इतने खूबसूरत गीत के साथ चलिए स्वागत करते हैं अपने सारे सखियों का अपने गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में,
1: और साथ ही स्वागत है उन सभी सखियों का जो आजकल मायके आई हुई हैं छुट्टियां बिताने। देश दुनिया कहीं भी घूम आइए, पर जो मजा अपने मायके के आंगन में है वो और कहाँ। इस तपती जलती गर्मी में भी घर में गूंजते हंसी ठहाके मस्ती मजाक घर के साथ साथ जिंदगी की रौनक को भी कई गुना बढ़ा देते हैं और मन को भर देते हैं सुकून से।
0: बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, वहाँ पहुंचकर हम कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों में और लौट जाते हैं, थोड़े बेपरवाह थोड़े आलसाए से और कई बार तो बिल्कुल कुछ भी ना करने के मूड में, है ना। और पता है बच्चों को तो घर वाले संभालते ही हैं, साथ में हमें भी
1: बिल्कुल
0: घर वाले संभालते हैं।
1: मायके जाने के यही तो फायदे हैं। और इन सब के बीच जो नोक झोंक चलती है, जो मीठी तकरार होती है, साथ में जो गीत संगीत का दौर चलता है, तरह तरह के पकवान और अपने भाई बहनों से लोगों से ढेर सारी गॉसिप, इन सब का मजा और भी बढ़ जाता है अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है, या फिर अगर हम सब ने ये प्लान कर लिया कि हम किसी एक के घर में मिलेंगे और वहीं पर सारी चौकड़ी मचने वाली होती है।
0: बिल्कुल कितना अच्छा लगता है अपनों से मिलकर हम कितनी नई यादें बनाते हैं और वहीं ढेर सारी भूली बिसरी बातों को भी याद कर सुकून उठाते हैं, है ना। और एक दूसरे के खुशियों में शामिल होते हैं, है ना प्रीति।
1: और देखो ना, जब वो भूली बिसरी बातें हमें याद आती हैं, जब हम वो घटनाएं शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुरा भी उठते हैं। और ये जो फैमिली मोमेंट होता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम शेयर करते हैं हमने क्या नया सीखा, क्या नया जाना, और अपने कंफर्ट जोन से दूसरे के कंफर्ट जोन में एडजस्ट करना भी सीखते हैं, साथ ही सीखते हैं शेयरिंग केयरिंग और बहुत कुछ। वैसे शारदा, तुम मुझे ये बताओ, जब तुम अपने मायके जाती हो तो तुम्हें कैसे लगता है?
0: भाई जैसे सभी को, जैसे आपको, जैसे और ये तो एक परंपरा है, कभी हमारी मम्मी लोग भी हम लोग को मायके ही लेकर जाती थी, तो जो वहाँ खुशियाँ मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलता है ना, वो कहीं भी मुमकिन नहीं है।
1: बिल्कुल। और देखो ना, वहाँ जाकर कहीं ना कहीं हम अपने बचपन को जीने लगते हैं। हमसे भी वहाँ भी जो हमारे बड़े होते हैं, हम जितना आराम से पड़े होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, वहाँ भी थोड़ी थोड़ी डांट मिल जाती है, लेकिन सबके साथ वो हंसी मजाक में वो पल बीत जाते हैं।
0: कितना अच्छा लगता है ना कि काफ़ी दिनों के बाद जब अपने उसे

0: तो मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से,
1: हाँ
0: और भी जितने भी रिश्तेदार हैं, और
1: सच में
0: वहां
1: पास
0: जाकर के
1: पड़ोस
0: पास
1: से।
0: पड़ोस से जाओ
1: हाँ
0: तो पहले तो रास्ते से ही लोग मिलने लगते हैं,
1: सच।
0: है ना।
1: और वो जो खुशी जब घर से निकलते हैं, जो अपने मायके पहुंचने की जो खुशी रहती है, फिर उसके आगे सब कुछ फीका फीका सा लगता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: कहीं भी प्रीति, आपने वैसे भी सही हम लोगों ने ये बात अपनी श्रोता बहनों को कहा कि कहीं भी आप हो आइए, जो खुशी, जो आनंद, जो सुख शांति आपको अपने घर के आंगन में मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिल सकती, है ना।
1: और इस चीज को देखो, हम महिलाएं हैं इसलिए हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमको अपने मायके जाने को मिलता
0: मिलता
1: है।
0: है, मतलब
1: और
0: एक वो इंतजार होता है कि भाई
1: हाँ
0: छुट्टी होगी बच्चों की तो हम
1: हाँ
0: चलेंगे
1: अब
0: घर।
1: बस ये बात जो हमारे श्रोता बंधु लोग हैं वो भले नहीं महसूस कर पाते, लेकिन हाँ महिलाएं तो सभी इस बात को हम लोगों से जुड़ रही होंगी और ये बात समझ रही होंगी कि कितना मजा आता है जब हम अपने मायके की ओर चल पड़ते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और
1: हाँ
0: वैसे प्रीति देखो ना कि जब भी हम कभी अपनों से मिलते हैं तो वो कितने बेपरवाह हो जाते हैं हर बातों को लेकर के, कोई दिखावा नहीं करते,
1: कोई दिखावा नहीं
0: कोई नहीं
1: करते।
0: करते, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी अपने होते हैं जो बात बात पर शो ऑफ करते हैं, है ना।
1: हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो कि हर घर में और या फिर दोस्तों के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं।
0: बिल्कुल, कभी कभी देखो ना कि जैसे मान लो दो बहनें हैं या फिर कोई भी हो
1: कोई भी रिलेशन
0: रिश्तेदार,
1: में। हाँ
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: बात बात पर कुछ भी हो रहा हो और कुछ ना, वो ऐसे मौके निकाल ही लेते हैं कि जिससे कि अपने आप को बहुत ही दिखावा करें, बहुत ही शो ऑफ करें, अपने ज्ञान की बातों को मतलब
1: मतलब तुम्हारा ये
0: बताएं।
1: कहने का मतलब है कि कोई ना कोई मौका जैसे ही उन्हें मिलता है वो शो ऑफ करते हैं, या तो कभी अपने पद को
0: पद को
1: दिखाते हैं,
0: दिखाते हैं,
1: कभी
0: कभी
1: अपने
0: अपने सामान को दिखाते हैं, कभी अपने शौक को दिखाते हैं,
1: और कभी अपने ज्ञान को।
0: ज्ञान को दिखाते हैं।
1: हाँ सही
0: और जो
1: कहा,
0: लोग अपने हैं ना वो तो थोड़ा बहुत अपने इस स्वभाव को भाई बर्दाश्त कर लेते हैं
1: सही कह
0: कि
1: रही हो।
0: चलो हो गया, बहन है, चलो हो गया, ये है, वो है, ऐसे करके, पर हमारे सामाजिक ताना बाना इन्हें निगेटिव रूप में लेते हैं ना।
1: बिल्कुल सही कहा, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो ऐसे लोगों को, जो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं उन्हें पसंद नहीं करता और उसको निगेटिविटी के तौर पर देखता है। और जो मनोवैज्ञानिक है वो तो ये मानते हैं कि ये एक तरह की इनसिक्योरिटी है कि वो अपना शो ऑफ कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो लोग हमारी ज़्यादा हमारी एक्सेप्टेंस होगी, हमारी एक जगह बनेगी और लोग हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, जबकि होता इसका दूसरा है। लोग आपसे कटने लगते हैं, लोग दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी ही कहेंगे, अपनी ही बात को
0: रखेंगे हर
1: रखेंगे
0: जगह।
1: इस हर जगह, दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा आपसे दूरी बनाएंगे, अस्वीकार करेंगे आपको।
0: बिल्कुल, ये नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा ही नहीं लगता,
1: हाँ,
0: है ना।
1: तो हम तो यही कहेंगे कि भाई देखिए, शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं है, इस आदत से, दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि जो आपके अपने हैं वो तो जानते हैं कि आप किस पोजीशन में हैं, किस स्थिति में हैं, तो वहाँ बेवजह से का क्या शो ऑफ करना।
0: मतलब
1: और
0: ये जो जो आपके सामने है वो भी बहुत ही अनकंफर्ट महसूस
1: हाँ
0: करते
1: यस
0: हैं, और आप भी कहीं ना कहीं जो कर रहा होता है वो भी इस चीज से ग्रसित होता है, लेकिन फिर भी शो ऑफ करता ही रहता
1: हाँ, तो भाई इस आदत से, अगर
0: है।
1: ऐसी आदतें हैं किसी में भी हैं, तो उसको थोड़ा सा सोचिए, समझिए, उसको दुरुस्त कीजिए और इन सब चीज़ों से बचिए। चलिए हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो शारदा कैसा लगा ये प्यारा सा गीत?
1: अरे बहुत खूबसूरत,
0: बहुत खूबसूरत। वैसे ही शारदा की पसंद का गीत था जो हमने अपने श्रोताओं को सुनवा दिया।
1: अच्छा
0: हाँ, तो देखो भाई शारदा इतना सुंदर गीत तुमने सुनवाया श्रोताओं को। थोड़ी सी बातचीत और, मैंने देखा कि तुमने भी चश्मा लगाया है।
1: हाँ।
0: मैंने भी चश्मा लगा लिया है। और चलो हमने तो लगा लिया, ठीक है, लेकिन मैंने देखा आजकल बहुत यंग एज के बच्चे, टीनेज, बहुत यंग एज के और टीनेज बच्चे भी चश्मा लगा के घूम रहे हैं, तो ये थोड़ी चिंता का विषय है ना। तो इस विषय पर हम एक बातचीत लेकर आए। हमारे बातचीत का जो टॉपिक है वो यही है, कम उम्र में बढ़ती मायोपिया। और इस पर बातचीत कर रहे हैं अभय कांत तिवारी जी, डॉक्टर एस एस सिन्हा से। तो पहले हम सुनते हैं ये बातचीत और फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: श्रोताओं नमस्कार। बदलती जीवन शैली, डिजिटल उपकरणों का बढ़ता प्रयोग और ऑनलाइन शिक्षा, इन सब का प्रभाव आजकल हमारे बच्चों की आंखों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कम उम्र में बढ़ती मायोपिया अर्थात

0: निकट दृष्टि दोष की समस्या आजकल बहुतायत में देखने को मिल रही है। मायोपिया की समस्या केवल चश्मा लग जाने तक ही सीमित नहीं है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके और भी कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। तो आखिर मायोपिया है क्या? इससे क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? और माता-पिता कैसे जल्दी पहचान सकें कि इसके लक्षण क्या हैं? तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एस सिन्हा, जो एक नेत्र सर्जन हैं और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज के, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आखिर मायोपिया है क्या?
1: मायोपिया जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ये बच्चों को ज्यादा होता है। इसमें बच्चे नजदीक का तो देख लेते हैं, लेकिन दूर उन्हें धुंधला दिखता है, दूर देखने में उन्हें कठिनाई होती है। इसका कारण ये है कि हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर आंख

0: तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आखिर मायोपिया है क्या?
1: मायोपिया जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ये बच्चों को ज़्यादा होता है। इसमें बच्चे नज़दीक का तो देख लेते हैं लेकिन दूर उन्हें धुंधला दिखता है, दूर देखने में उन्हें कठिनाई होती है। इसका कारण ये है कि हमारी आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर आँख के अंदर रेटना पर पड़ती है। मायोपिया में आँख की लंबाई सामान्य से लंबी हो जाती है जिसके कारण जो तस्वीर है वो रेटिना से आगे बन जाती है और प्रतिबिंब आगे बन जाने के कारण चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं और चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये कम उम्र में ही ये समस्या क्यों ज़्यादा बढ़ रही है?
1: आजकल ये समस्या ज़्यादा देखने को आ रही है। इसका मुख्य कारण है आउटडोर खेलों की कमी। अनुसंधान बता रहे हैं कि जो बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे या उससे अधिक समय बाहर प्राकृतिक रोशनी में बिताते हैं उनमें मायोपिया का खतरा कम होता है। धूप केवल विटामिन डी नहीं देती, प्राकृतिक प्रकाश आँखों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा कारण है मोबाइल और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। मोबाइल बच्चे की आँख से केवल 20-30 सेंटीमीटर दूर होता है। लंबे समय तक नज़दीक देखने से आँखों पर तनाव पड़ता है। आज कई बच्चे प्रतिदिन 4 से 8 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं जिसके कारण उन्हें मायोपिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है अत्यधिक निकट कार्य। लगातार पढ़ना, लिखना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना और ऑनलाइन स्टडी जो आज हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, इसके कारण बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसके कारण भी जो मसल है वो ज़्यादा एकोमोडेट स्टेट में रहता है और मायोपिया की समस्या बढ़ जाती है। और एक कारण आनुवंशिक कारण है, जेनेटिक के कारण भी जिनके माता पिता को मायोपिया ज़्यादा है उनके बच्चे को होने का चांस ज़्यादा हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, ये कितनी कम उम्र तक के बच्चों को मायोपिया होने की संभावना हो सकती है? कि आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि कौन सा बच्चा आपके पास ऐसा है जो बहुत छोटी उम्र में ही मायोपिया की समस्या से ग्रसित हो गया?
1: मायोपिया बहुत कम एज के बच्चों को भी देखने में आता है, 1 वर्ष के बच्चों को, 2 वर्ष के बच्चों को। इसलिए सभी बच्चों की जांच 2 साल 1 साल की एज में करवा लेना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, कोई 1 साल का बच्चा वो बता तो पाएगा नहीं कि उसको क्या समस्याएं हो रही हैं, कि या उसका सर दुख रहा है या उसको देखने में दिक्कत हो रही है। तो जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो कैसे पहचाने कि इस बच्चे को कुछ समस्या हो रही है?
1: एक जनरल रूटीन चेकअप होना चाहिए 1 साल 1.5 साल के बच्चों का। वो हम लोग रेटिनोस्कोपी करते हैं, रेटिनोस्कोपी के द्वारा पता कर लेते हैं कि इसमें चश्मा लगने का है कि नहीं। वो बच्चा पढ़ तो नहीं पाएगा लेकिन रेटिनोस्कोपी करके हम लोग मालूम कर लेते हैं कि इसमें माइनस ग्लास लग रहा है कि नहीं।
0: अगर हम बात करें लक्षण की, तो इसके क्या-क्या लक्षण हैं?
1: बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में यदि उसे पीछे सीट पर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है और बच्चा दूसरे कॉपी का नकल कर रहा है, उसके बाद टीवी के नज़दीक जाकर देखता हो, दूर से साइन बोर्ड नहीं पढ़ पाता हो, तो इससे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि वो बच्चा, उसको प्रॉब्लम हो रही है देखने में। वो बार बार आँख मिचमिचा सकता है, टीवी के बहुत पास बैठता है, किताब को बहुत नज़दीक लाकर पढ़ता है और सिरदर्द की समस्या भी होती है, आँखें बार बार मलना, स्कूल में बोर्ड देखने में परेशानी, ये सब लक्षण हैं मायोपिया के।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि 1 साल के उम्र के बच्चे के आंखों की जांच करानी चाहिए कि उसको मायोपिया की समस्या तो नहीं हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कितने अंतराल पे हम ये जांच कराते रहें?
1: एक एक वर्ष के अंतराल पर,
0: एक
1: एक
0: एक
1: एक वर्ष के
0: वर्ष
1: अंतराल
0: में
1: पर,
0: कम से कम एक बार हमें
1: हाँ एक
0: नियमित
1: बार
0: जांच
1: नियमित जांच
0: किसी
1: करा लेना
0: नेत्र रोग
1: चाहिए।
0: विशेषज्ञ से
1: हाँ
0: कराते रहना चाहिए।
1: 3 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से बच्चों की जांच हो जाना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कारणों की, आपने बात की कि आजकल हम घर से बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, या उसको स्टडी मटेरियल स्कूल या उसके कॉलेज द्वारा, उसकी कोचिंग्स द्वारा ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसकी एक मजबूरी है कि उसे लैपटॉप, टैब या फिर मोबाइल को देखना ही देखना है। तो ऐसे में उसका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए और क्या नियम अपनाने चाहिए कि उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो?
1: पहले माता पिता बच्चे के गतिविधि पर ध्यान दें, जैसे अधिक स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करें, आउटडोर गेम कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाहर खेलने का आदत डालें बच्चों में। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ये सब बाहर खेलें, फुटबॉल, साइकिल चलाना, ये सब। उसके बाद एक 20-20-20 का नियम होता है, हर 20 मिनट पढ़ने के बाद या मोबाइल देखने के बाद 20 सेकेंड का एक गैप लेना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए और 20 फीट दूर तक उसको देखना चाहिए जिससे आँखों के मसल को रिलैक्सेशन मिलता है और उसके सिर दर्द होने का भी खतरा कम हो जाता है। स्क्रीन टाइम को सीमित करना है बच्चों को। पढ़ते समय किताब करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर किताब हो, और रोशनी, पढ़ाई के समय कम रोशनी में नहीं पढ़ना है, पर्याप्त रोशनी होना चाहिए पढ़ने के समय।

0: नियमित नेत्र परीक्षण कराना जरूरी होता है।
1: डॉक्टर साहब, जो कृत्रिम रोशनी है और प्राकृतिक रोशनी है, तो कृत्रिम रोशनी में हमारे आंखों पे क्या ज्यादा तनाव पड़ता है जिससे समस्याएं होती हैं?
0: जो नेचुरल सनलाइट है वो आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद है और उसमें मायोपिया होने का चांस कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मायोपिया को पूरी तरह से रोका जा सकता है या केवल उसकी गति को कम किया जा सकता है? जैसे जांच के लिए आपके पास आया और मायोपिया डिटेक्ट हुआ, बहुत कम उम्र का बच्चा है, क्या हम उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं या चश्मा लगा के उसको नियंत्रित कर सकते हैं?
0: हाँ, पहले तो हम लोग जो नंबर निकल रहा है बच्चों को, जो नंबर आ रहा है माइनस ग्लास, वो देना है बच्चों को, चश्मा पहनने के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस आता है, उसको दिया जा सकता है। और आजकल एक नया रिसर्च हुआ है जिसमें लो डोज एट्रोपिन आई ड्रॉप, लो डोज में एट्रोपिन आई ड्रॉप हम लोग देते हैं, तो इसमें एक शोध हुआ है कि ये मायोपिया को रोकने में काफ़ी हद तक मददगार है। उसके बाद यदि मायोपिया बहुत ज़्यादा हो और एज 22 इयर्स के बाद यदि हो, एक ऑपरेशन होता है लैसिक सर्जरी चाहे स्माइल ऑपरेशन, तो ये सब 22-23 वर्ष के बाद ये होता है ऑपरेशन, कॉर्निया के एक ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा वो नंबर हटा दिया जाता है।
1: तो कम उम्र के बच्चों के लिए लैसिक
0: कम
1: सर्जरी जो
0: कम
1: है
0: उम्र के बच्चों के
1: वो
0: लिए
1: उपयुक्त नहीं है?
0: नहीं, वो उचित नहीं है, वो करीब 22 या 23 वर्ष के उम्र होने के बाद।
1: डॉक्टर साहब, आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की कि पहले हमें चश्मा या
0: चश्मा देना है या कॉन्टैक्ट लेंस
1: कॉन्टैक्ट लेंस
0: देना
1: देना है,
0: है,
1: तो क्या कम उम्र के बच्चों को कॉन्टैक्ट लेंस लगाना ठीक होता है?
0: उसका एक टाइम होता है, इतने देर तक लगाना है, फिर हटा दिया जाता है, उसको पेरेंट्स को बताया जाता है, उसका तरीका बता दिया जाता है
1: आपने
0: किस
1: एट्रोपिन
0: तरह।
1: की बात की, आपने बात की लैसिक सर्जरी की, जो 22 से 23 वर्ष के बाद ही लगाया जा
0: हाँ,
1: सकता
0: उस
1: है।
0: एज के बाद लो डोज एट्रोपिन और ग्लास।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, यदि समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं?
0: इसमें एक रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लोकोमा और अर्ली कैटरेक्ट होने का भी चांस रहता है। यदि बहुत ज़्यादा मायोपिया है, -12, -13, -14 इस तरह, तो वो आगे चलकर रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस रहता है। ऐसे बच्चों को, अधिक मायोपिया के बच्चों को ग्लोकोमा का भी एक चांस होता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, ये रेटिना डिटैचमेंट क्या होता है, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से समझाइए।
0: जो रेटिना होता है, जिस पर हम कोई भी वस्तु जब देखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है, आंख के रेटिना पर, जो एक पर्दा कहलाता है, आंख का पर्दा, उस पर एक उसका प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब बन रहा है और रेटिना का जो लेयर्स है यदि वो अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो जब मायोपिया ज़्यादा होता है तो रेटिना डिटैच कर जाता है, मतलब रेटिना के लेयर्स अलग हो जाता है, उसके बाद उनका देखना बहुत कम हो जाता है और उसका ऑपरेशन जरूरी हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या रेटिना डिटैचमेंट के केस में जो मरीज है, जो रोगी है, क्या उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है?
0: हाँ, अचानक उसके आँख के सामने एक पर्दा जैसा गिर जाता है और पेशेंट बताता है कि हमको दिख नहीं रहा है, तो इसकी सर्जरी होती है, रेटिना डिटैचमेंट की सर्जरी होती है और उसके बाद फिर काफ़ी इम्प्रूव होता है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है,
1: वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता
0: पूरी
1: है।
0: तरह से ठीक नहीं।
1: डॉक्टर साहब, भारत में हमारे यहाँ क्या ये मायोपिया के लिए पर्याप्त जागरूकता है? आपको क्या लगता है क्या कमी रह जाती है कि आजकल हम इतने ज़्यादा बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत मोटे मोटे ग्लासेस लगा के जा रहे हैं स्कूल?
0: इसमें जागरूकता की कमी है और इसलिए गाँवों में और शहर में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, इनका रेगुलर स्क्रीनिंग ऑप्थेलोलॉजिस्ट द्वारा, नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा रेगुलर कराना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। जो भी बच्चे जिनका नंबर निकल रहा है माइनस में, उनको चश्मा यथाशीघ्र उपलब्ध करा देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, डिजिटल युग का एक ये कहें कि साइड इफेक्ट है, हम डिजिटल उपकरणों से दूर नहीं रह सकते हैं, हम निर्भर हैं एक तरह से उस पे, तो इसके साथ कुछ समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि उसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, उपचार क्या है। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को और माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम मायोपिया की समस्या से दूर रहें, या अगर हो जाए ये समस्या तो हम उसको समय रहते नियंत्रित कर सकें?
0: मायोपिया यदि है तो बच्चों को पहले चश्मा यथाशीघ्र मिल जाना चाहिए, बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और यदि बहुत छोटा बच्चा है तो मोबाइल से जितना ही दूर रहे वो उतना अच्छा है। लेकिन जो बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, वो आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद आँख को रेस्ट दें, कुछ मिनट बुक से या लैपटॉप से हटा लें आँख को और थोड़ा टहल लें, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाएं। लगातार बैठना लैपटॉप पर या स्क्रीन पर वो थोड़ा सा हार्मफुल है।
1: डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी हो सकती है जिससे डिजिटल उपकरणों के प्रभाव को, स्क्रीन के प्रभाव को हम कम कर सकें? जैसे कि आपने बताया कि 20 मिनट से ज़्यादा हमें लगातार नहीं देखना है उसकी तरफ, हमें थोड़ा बाहर निकलना है, टहलना है, क्या हम कोई ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं या हम अपने खान पान से क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा नियंत्रित कर सकें?
0: खान पान में भी हम लोग यदि ध्यान दें तो जैसे विटामिन ए बच्चों में

0: एक नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या बहुत होती है, रतौंधी की समस्या, तो विटामिन ए से काफ़ी फायदा होता है आँखों को। विटामिन ए पके हुए फल, पालक, हरी सब्जियाँ, पपीता और जितने पीले फल हैं उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो बच्चों को हरी साग सब्जी, फल, पीले फल खासकर ये देना चाहिए। और इसके अलावा जो है आँख में कुछ ड्रॉप्स है, जैसे लैपटॉप पर या बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा समय है तो कार्बोक्सी मिथाइल सिलोज एक ड्रॉप आता है, उसको बीच बीच में डालते रहें, आँख भीगा रहे, थोड़ा सा वेट रहे, आई ड्राई नहीं हो, इस पर बच्चे आँख वेट रहता है, भीगा भीगा रहता है तो उसमें
1: तो उसके दुष्प्रभाव को
0: हाँ उसके
1: हम कम
0: दुष्प्रभाव
1: कर
0: कुछ कम
1: सकते
0: हो
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, हमें आशा है कि हमारे श्रोतागण जरूर इससे लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी मैंने सुन रही थी कम उम्र में बढ़ती मायोपिया, इस विषय पर डॉक्टर SS सिन्हा से बातचीत कर रहे थे अभय कांत तिवारी जी।
3: और देखो ये बातचीत बहुत ही सार्थक रही। बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए तो हम इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी बातचीत में भी हम सुन रहे थे, थोड़ा जो फ़ोन है ये बड़ी अपनी महती
2: बिल्कुल
3: भूमिका
2: सही
3: निभा
2: कहा
3: रहा
2: प्रीति
3: है
2: आपने
3: ना, जो क्योंकि लगातार आपको
2: हाँ
3: आंखों के सामने
2: असर
3: बना
2: पड़ता
3: रहे
2: है
3: हैं तो
2: वो।
3: उस पर आंखों पे बहुत असर पड़ रहा है। और देखो हम फोन में इतना उलझे रहते हैं कि हमने अपनी जो सुबह की जो मॉर्निंग की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है कि थोड़ा देर हम बाहर व्यायाम करें, थोड़ा देर जो सुबह की धूप
2: टहले।
3: होती है हाँ वो लें, उससे भी आंखों को मजबूती मिलती है और जो आंखों की जो व्यायाम है वो करनी
2: विटामिन
3: चाहिए।
2: डी
3: हाँ
2: ये सब।
3: तो चलिए, इतनी अच्छी बातचीत के बाद, इतनी अच्छी चर्चा के बाद शारदा, एक गीत तो बनता है ना।
2: बिल्कुल, तो
3: हाँ तो
2: चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: कराया जो भी मिले
1: सेल्फी अच्छा
0: हाँ लेकिन सोच समझ के लीजिए सेल्फी और बात हम सेल्फी कर रहे हैं आज हमने फोन की ढेर सारी बातें नहीं कर ली
1: बहुत सारी बातें की भाई
0: और देखो ना फोन ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में हमारे बातचीत में बिल्कुल
1: शामिल हुआ
0: जा रहा है और हम कितना भी कह लें कितनी भी हम कोशिश लगातार करते रहते हैं कि फोन से थोड़ी दूरी बनाए पर
1: जरूरत पड़ी जाती है
0: लेकिन ठीक है इसे जरूरत तक ही रहने दीजिए जितनी जरूरत हो उतने समय ही फोन उठाइए बात करिए सेल्फी ले लीजिए
1: कहते हैं ना प्रीति कि किसी भी चीज की कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराई भी है और हद से ज्यादा कोई भी चीज़ भाई खराबी होता है ना भाई फ़ोन सेल्फी लीजिए फ़ोन से बात करिए फ़ोन से मैसेज कीजिए जो भी ज़रूरी चीज़ें वो करिए हो सके तो थोड़ा फ़ोन आप चला भी लीजिए लेकिन उससे दूरी ज़रूर बनाइए क्योंकि ये हमारी आदत बहुत कहा जाते एक गंदी आदत बनी जा रही है।
0: हाँ देखो ना जो फोन है जब हम उसको एक बार स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो कितना मिनट घंटों में बदल जाते हैं और पता ही नहीं चलता हमारे बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं और जो हमारी कई अच्छी आदतें हैं ना जैसे किताबें पढ़ने की आदत वो छूटती जा रही है। हम कुछ भी खोजना हो हमने फोन उठाया और टाइप किया हमें मिल गया लेकिन चलिए ये तो हम इसके अच्छे पॉइंट्स हो गए लेकिन जो कुछ हमें है कि हम उसमें जो रील्स देखते हैं जो नाहक अपना समय खराब कर रहे हैं
1: उससे तो ये चीज हमने तो ये देखा है कि कुछ अगर आपके हाथ में मोबाइल है कुछ हमारे बच्चे हैं या कोई भी है हाँ कभी कभी हम खुद हम स्वयं की इसकी भोगी है कि कोई बहुत ही जरूरी काम है घर का काम है या कुछ भी तो एक बार फोन आ गया बस स्क्रॉल करते जा रहे अरे हो जाएगा देखते देखते भाई 4 बज गया 5 बज गया पता ही नहीं चला तो इसमें एक बहुत बड़ा लॉस है कि हमारे जरूरी काम भी छूट जाते हैं।
0: और देखो शायद जो फोन जब स्क्रॉल करते हैं हमें पता नहीं चलता लेकिन तुम देखो कि हमारे कंसंट्रेशन में कमी हो रही है हमारी नींद खराब हो रही है और कहीं ना कहीं हम जैसे होता है ना जब काम छूट जाएगा तो तनाव होता है चिंता होता है और घर का जो डिसिप्लिन है वो भी खराब हो रहा है
1: ये दिनचर्या ही पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है
0: और जो समय का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है और जब बड़े करते हैं ऐसा तो भाई बच्चे तो देखकर करेंगे वो सीखेंगे ही तो पहले हमें फोन को ना कहना है उसे रख देना है जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं इस्तेमाल करना है फालतू में अपने समय को रील्स देखने में और क्यों वेस्ट करें। और कई कई बार तो मैंने देखा जो लोग बहुत बिजी रहते हैं वो लोग भी जैसे ही समय मिलता है वो फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं वो ये कहते हैं कि हम खुद को इंटरटेन कर रहे हैं तो इंटरटेन करना है तो थोड़ा सा आप किताबें पढ़ लीजिए
1: बिल्कुल सही कहा और इसके लिए बहुत ही अच्छे मतलब अच्छा रास्ता है कि आप किताबों से अपनी दोस्ती बढ़ाइए है ना और कोशिश करें कि फ़ोन से अगर भाई आपके पास फ़ोन रखा हुआ है किताब आप पढ़ भी रहे बुक आप देख भी रहे तो आपका हाथ वहाँ पहुँच जाएगा भाई देखे फ़ोन 1 मिनट 2 मिनट फिर ये क्या है कि आप कोशिश करें कि फ़ोन को किसी दूर मतलब दूसरे कमरे में या तो सेल्फ पर कहीं ऐसे रख दीजिए सेफ करके।
0: तो कहने का मतलब ये है कि जो हम किताबों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं उनसे जो हमारी दूरी बढ़ गई है उसे ख़त्म करना है और जो हमारे पास टाइम मिलता है अगर मनोरंजन के नाम पे कुछ पढ़ने के नाम पे पढ़ना है तो किताबें से ही पढ़ना चाहिए उससे बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं जैसे कि अभी हमने बताया ना जिक्र किया तनाव से चिंता से जो लगातार आँखें जो फ़ोन की जो लाइट होती है ना वो हमें हमारे दिमाग को थका देती है
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए किताब पढ़ने की आदत डालेंगे तो ये तो एक

0: हैबिट है भी।
1: हाँ, कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इसकी शुरुआत करें एक वाक्य पढ़ने से।
0: हाँ, सही,
1: ये आदत लाएं कि धीरे धीरे इसको बढ़ाना है हमको। और ये किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, ये हमारी एकाग्रता वापस लाने के और भी मतलब कि किताबों की जो दुनिया होती है उसमें एक आसान शुरुआत है ना। और इसको जो है कि कोशिश करें कि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है, जो भी बुक है, जो भी किताब है, आप उसको एक नियम लागू करें अपने ऊपर स्वयं पर कि आप धीरे धीरे एक पेज, दो पेज, तीन पेज, कोशिश करें 10 पेज ऐसे पढ़ते ही जाएं।
0: बिल्कुल। और देखो शारदा, ये तो हम जब अच्छी बातों की बात करें तो क्यों ना सेहत ज्ञान में हम अपनी सखियों से कुछ ऐसे आसनों के बारे में बात करें जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं। क्योंकि भाई देखो, अब 21 जून आने वाली है तो आप हर तरफ देख रहे होंगे कि कितना लोग योग कर रहे हैं और काफ़ी हर जगह इसके बारे में बड़े लोग जागरूक हो गए हैं। तो थोड़े से हम ऐसे आसन बताते हैं जो आसान वाले हैं और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले आप किस आसन के बारे में बताएंगे?
1: सबसे पहले तो हम वज्रासन बताएंगे।
0: देखिए, ये एक ऐसा आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। पैरों को मोड़ के आराम से बैठ जाना है और इत्मीनान से अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इससे होता क्या है वो बताओ।
1: इससे होता है कि आपकी पाचन तंत्र जो है, पाचन जो क्रिया है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हो जाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ। और जैसे कि तुरंत आपके पास इतना समय नहीं है, इतना जगह नहीं है कि आप भोजन करने के तुरंत बाद घर के बाहर जाइए टहलने, या फिर थोड़ा सा टहलना, ये चीज़ तो इससे बहुत ज़रूरी है। वज्रासन बहुत ईजी है कि आप अपने घुटने को मोड़ करके, बैकबोन सीधी करके और दोनों हाथ सामने की ओर घुटने पर रख के आप 5 से 10 मिनट तक आराम से मुद्रा में बैठ जाइए।
0: बिल्कुल। तो ये आपके कहते हैं ना कि आपको आंतों को मजबूती देगा, आपकी पाचन क्रिया को सुधारेगा और जो भी एंजाइम्स होते हैं उन्हें रिलीज।
1: बिल्कुल। इसमें एक पवन मुक्त आसन है, इसे भी मतलब पेट में फंसी हुई गैस निकल जाते हैं और आंतों की सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा है। वैसे ये एक बलासन है, ये पेट के अंगों को दबाकर उनकी मालिश करता है और जिससे पाचन में सुधार होता है और तनाव की भी कमी होती है। नौका आसन पेट के अंगों को मजबूत करता है और पाचन अंगों को भी ये उत्तेजित करता है। और अधर मत्स्येन्द्रासन, यह एक रीढ़ की हड्डी को मोड़कर पेट के अंगों पर दबाव डालता है जिससे कब्ज में राहत मिलती है। तो ये मुख्य आसन है जिससे आपकी पाचन प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से होती है।
0: हाँ।
1: कोशिश करें कि खाना खाने के बाद आप हल्का सुपाच्य भोजन ही शाम को करें और हल्का भोजन करने के बाद कोशिश करें 10-15 मिनट टहल जरूर लें और अगर नहीं कर पाते तो आराम से वज्रासन में बैठ जाए।
0: अब देखो, तुमने वज्रासन की इतनी अच्छी वो बता दी है कि ऐसा कहते हैं ना कि अगर हम थोड़ी देर भी वज्रासन में, वैसे तो टोटल 20 मिनट बैठना चाहिए जिससे कि हमारा जो हाजमा है ना बिल्कुल दुरुस्त रहता है। तो जितने भी हमने ये छोटे छोटे आसन बताए हैं, अगर बाकी सबको तो सुबह करना चाहिए, पर वज्रासन एक ऐसा है जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं और खाने के मैंने सुबह शाम दोनों करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो शारदा, आज हमने इतनी सारी बातें की, हम अपनी सखियों से अपने इस कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया भी चाहते हैं कि उन्हें हमारे कार्यक्रम में और क्या सुधार किया जा सकता है, उनके क्या सुझाव हैं, उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा, सब आप हमें अपने मैसेज करके बता सकती हैं। तो उसके लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है वो लिख लीजिए, 8004926250। एक बार फ़ोन नंबर फिर से, 8004926250। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि अपने कार्यक्रम में कुछ अच्छी बातें करें।
1: बिल्कुल। और चलते और चलते यही कहेंगे कि आप योगासन कीजिए। हाँ। अच्छा भोजन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बिल्कुल। और देखिए 21 जून को जो हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं जिसकी हर तरफ चर्चा है, तो ये सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, वाकई में योग एक ऐसी साधना है जिससे हम अपने मन पे, अपने शरीर पे, अपने
1: इंद्रियों पर
0: बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं, अनुशासन कर सकते हैं। और देखो जब हम योग करते हैं ना तो अंदर से मन बड़ा
1: अच्छा खुश हो जाता है, प्रसन्न रहते हैं।
0: तो बिल्कुल भाई, देखिए बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो ऐसा कोई बहाना नहीं है कि स्कूल भेजने की जल्दी है, आप भी सूर्योदय से पूर्व
1: और बच्चों को भी लेकर करें।
0: हाँ, सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय उठिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। अपने लिए निकालेंगे तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तो घर परिवार सब स्वस्थ रहेगा। वैसे तो हम सबको कहते हैं कि भाई सब लोग योग करिए। और अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, तो दीजिए इजाजत प्रीति
1: और शारदा को और लीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश की नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजन

0: में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग

0: रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए इज कमिटेड।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच

0: दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ

नदियों से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में

0: करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है, ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी, अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
2: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
2: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
2: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
2: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
2: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
2: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक

0: बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
1: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
2: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
1: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
1: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
3: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
4: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
5: जिंदाबाद,
4: इंकलाब
5: जिंदाबाद,
4: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
6: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
7: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
3: अरेस्ट करो!
6: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
8: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
7: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: come, balde come, ti kona manta hai. Durant, hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं,

0: राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ,
1: क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
1: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
1: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
1: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ।
8: लो, देवेंद्र भी आ गया।
9: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
7: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
8: ठीक है माँ।
9: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
8: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
10: I'll send you bill for any internal damages. Oh, thank

0: दीदी ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
0: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
0: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
0: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट।
1: माँ
3: ये चाकू देख रही है ना,
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
1: अरे
4: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
1: माँ
4: हट रास्ते से।
1: माँ
5: क्या हुआ? कुछ ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना,
1: छोड़ दो।
5: मुझे मत मारो,
1: कुछ मत करो।
5: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी
5: याद नहीं कहाँ रखी है।
4: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे मेरे पास छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज से गाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
6: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
0: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ। हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
0: अच्छा।
1: हेलो।
3: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा।
3: हाँ।
1: पापा।
3: हाँ, बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
3: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
3: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
0: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
9: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना सबकी जान
9: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार।
12: उमंग, उमंग, उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1,026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सत्य पे सत्ता फिल्म से। आवाज आशा भोसले, धीरज कौर की, बोल गुलशन बाबरा के, संगीत आर डी बर्मन का।

आवश्यक सूचना सुनिए। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न जनपदों के कुछ इलाकों में बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश के साथ मध्यम दर्जे की आंधी आने की बहुत संभावना के ऑरेंज अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों में सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज और लता मंगेशकर की आवाज, बोल देव कोहली के संगीत, राम लक्ष्मण का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए हम आपके हैं कौन फिल्म से खूबसूरत संगीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़, देव कोहली के बोल संगीत राम लक्ष्मण का।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। युवजन सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवजन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन

0: तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद सुनिए 6:30 पर भारत और नीदरलैंड्स के मध्य हिंडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। 6:05 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत सुनेगा। विषय है भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव को विषय है थायराइड कारण लक्षण और उपचार। 7:00 श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा।

7:10 पर फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर पंडित उल्लास बाबट का संतूर वादन, 12:15 पर पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन और रात 10:30 पर संगीता शंकर का वायलन वादन सुनिएगा। 8:45 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, 9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 10:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम सुनेगा। दिन में 11:00 एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 11:30 पर बोलते नगमे में।

12:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम होगा। पनघट कार्यक्रम होगा 1:15 पर, जिसके अंतर्गत सुनेगा कामिनी श्रीवास्तव के गाय लोकगीत के साथ संयुक्ता चौधरी की बातचीत। विषय है आंगन से खेतों तक महिलाओं का सफर। दोपहर 2:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग।

5:15 पर युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम, युवाणी 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में फूलचंद्र और साथी के गाय लोकगीत के साथ सुनिए इंद्र बहादुर सिंह से रितेश कुमार शुक्ल की बातचीत मेरी खेती मेरी बात में। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम सुनिएगा रामेंद्र कुशवाहा की कहानी। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सोचना। एक महिला जिनका नाम मुनचुंगी समुल्लमा है, इनकी उम्र 76 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गहरा सांवला है, बाल सफ़ेद हैं और इन्होंने सफ़ेद गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। ये 1 जनवरी 2026 से कहीं लापता हैं। इनके बारे में सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है परादनापुड़ी, जयपुर जिला, कोरापुड़, उड़ीसा। इसी क्रम में प्रीति तिवारी, उम्र 16 वर्ष, 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इन्होंने सलवार सूट नीले रंग का पहना है। ये 23 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। इनके बारे में सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है धीरज तिवारी, पिपराव, थाना खीरी, प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 8400660769। रवि शंकर शुक्ल, उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फीट 8 इंच, रंग के हुआ है। ये 17 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है श्याम बाबू, ग्राम कोलसरापुरा, बारा पोखरी, थाना खीरी, प्रयागराज। मोबाइल नंबर

7379598100। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह सरो में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में कल आप सुनेंगे

करेंगे श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वॉयलिन वादक पंडित एस एल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। समय होता है 7:00। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:30 पर। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम सुनेगा 8:15 पर। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा 2:00। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं 8:30 पर और 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

आज के फनकार। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। 11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर। दोपहर 3 बजे बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम। शाम 4 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनेगा पुरातत्व के तत्व। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजल अशोक। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: गज तत्वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य

के चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में छह तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के पांच तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है। किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

0: अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे।
1: गज तत्वाद्य गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी और बलबीर के स्वर में देशभक्ति गीत सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की धुन बनाई थी उपेन अय्यर ने। फिल्म का नाम था नया दौर। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கண்ணாடி கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में. बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का.

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की बोल सुरिंदर साथी के।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर ख़त्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज़ के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए। ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय। बैरा।
4: यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
4: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए।

0: है कि वो आज क्या क्या खाने वाला है, यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
1: हेलो सर।
2: यस मैडम।
0: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
2: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: देखिए, ये आपके यहाँ का मीनू है, मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मीनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
2: ओह, थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं, मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मीनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
0: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
2: ओह, वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे, ओके?
0: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
2: यस।
0: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें, बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
2: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
0: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मीनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मीनू भिजवा दूंगी और शाम के मीनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
2: ठीक है ठीक है।
0: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
2: मेज 12।
0: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मीनू कार्ड, ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
0: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से है, इतनी मेहनत कर रहा है, कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वॉल्टर,
3: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चल कर खाक हो गया।
0: अब इस तरह रोने से क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
3: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
0: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
3: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
0: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
3: कहो।
0: देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा,

0: ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ। वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
1: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सहारा ये नहीं हो सकता।
0: वॉल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो। सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
1: हा?
0: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
1: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
0: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
1: सारा
0: वॉल्टर, आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो। पता नहीं कितना बदल गया होगा वॉल्टर।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए, अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: ओ माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू, पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी नहीं, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर, कल ज़रूर आ जाना। वॉल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर, कल ज़रूर आना, ज़रूर आना, ज़रूर आना।
1: मेम साहब, आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आपका हुक्म।
0: ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वॉल्टर, कौन है?
2: सारा।
0: वॉल्टर, ओह वॉल्टर, तुम सच ही वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
3: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
3: ओके मैडम।
4: सारा।
0: वॉल्टर,

0: तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
1: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
1: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
1: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
1: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
1: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
2: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़, सुनहरे गानों का अंदाज़।

0: आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश दिल्ली 6 फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
2: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए येसुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत। गीत संगीत रविंद्र।

अभी आपने सुनैना फिल्म में यशोदास को सुना। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश गुलजार के लिखे गीत से। संगीत तैयार किया है राहुल देव वर्मन ने, आवाज किशोर कुमार की। फिल्म का नाम देवता।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहाँ चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे

0: अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दी।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं 3rd क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो 1st क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3rd क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
0: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
0: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पर पैसे जाया किया जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
0: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
0: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
0: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
2: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी बाबू तुम
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें हैं?
2: खबर बस यही है कि जिंदा हैं।

सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है।

एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं का जब

0: सच है क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ।
2: ये क्या कहने पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पीडीपी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खोला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।